0: कोई है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कोई है?
1: कभी खुद आईना देखे तो चेहरे में दिखे कोई, मेरी तस्वीर बनती हो तो नक्शे में दिखे कोई। ये उजियारे में हो तो ठीक, लेकिन क्या हो तब जब हो घना अंधेरा।